पिहवेनो सचाराई पाक्सा अदोहगर मुरा नकु लकी दके नचे इतना हम न्याम बाले वेनो सुवारा मुगरा